दोस्तों, तननी साथे मननी स्वच्छता ए आपनो मूल मंत्र छे, परंतु आ शहरनी स्वच्छता ए पण आपणी एक आदत होवी जोईए। स्वच्छतानी साथे रेडियो पालनपुरनी साथे ओनली ऑन 90.4 FM ट्यून रहो, मस्त रहो, सांभळता रहो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

हाय फ्रेंड्स, रेडियो पालनपुर 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आपनु हार्दिक स्वागत छे। दिल तो बच्चा है, चलो फरी उम्रना ये पड़ावनी वात करिए। जे बाळपण ने घड़पण वालू लागे, घड़पण ने बाळपण पण वालू लागे। नानू बाळक तेना दादा दादी के नाना नानी साथे जे यादगार पळो वितावे छे, तेवी पळो भाग्ये ज मां बाप पोताना संतान साथे वितावी शकता हशे। मित्रों, घड़पण ए उम्रनो एवो पड़ाव छे जेना नाना बाळकनी जेम जीववानी इच्छा थाय। क्यांक एवो कारण मळी जाय, यादोना शमणे पगरव अकारण पड़ी जाय। क्यांक एवो कारण मळी जाय, यादोना शमणे पगरव अकारण पड़ी जाय। न होय कोई शरत के फरियाद, न होय कोई शरत के फरियाद, बस एक एवो हृदय ने मुझने बाळपणनी विरासत मळी जाय। मित्रों, शब्दों समझवा जरूरी, बाळपणनी यादोना स्वप्न अकारण आवे छे। कारण बाळपणमां कोई शरत के फरियाद नथी। आवुं निखालस हृदय अने खुदने जो आवी विरासत मळी जाय ने, तो जीवनमां खुश रहेवानुं बहानुं मळी जाय छे।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
3: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
6: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं
1: मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
2: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
1: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
2: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
1: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
2: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
2: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
3: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो,
4: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत बधाई हो। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
1: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
2: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके

0: एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
1: आइए मारिया जी।
2: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? कुछ उदास लग रहे हो।
1: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
2: और बुरी?
1: जी।
2: अब भला वो कैसे?
1: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
2: हाँ हाँ जरूर।
1: जी
0: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
3: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
2: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
0: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
4: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
5: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
0: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
4: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
0: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।

0: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
0: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
2: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
2: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
0: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है।

0: उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं। बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
1: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

फिदा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: श्रीवास्तव जी, आप हमारा कारपूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते?
2: कारपूल से मेरा क्या फायदा?
1: मैं टिफिन में अक्सर कद्दू की सब्जी लाता हूँ।
2: मैं कद्दू खाता ही नहीं।
1: सुनिए तो, हमारा कारपूल ज्वाइन करने से आपके और हम सबके घर में एक नया LCD आ सकता है।
2: LCD? वो कैसे?
1: देखिए, कारपूल से सालाना 50,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इस बचत से हम सब नया LCD ले सकते हैं। आखिर बात तो एक ही है ना।
3: सेव फ्यूल यानी सेव मनी।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आज मैं उस जमाने की बात करने वाली हूँ जिस जमाने में आप मैसेज नहीं किया करते थे। आप अगर किसी इंसान को मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो पत्र यानी कि लेटर्स का सहारा लेते थे। हाँ, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जिस जमाने में हम मोबाइल यूज नहीं किया करते थे लेकिन पत्र लेटर्स लिखा करते थे। तो चलो आज पत्रों से

सुनहरी यादें मैं आपके सामने रखती हूँ। उस वक्त जब पोस्टमैन अपने घर आते थे, उनके आने की खुशी कुछ और ही हुआ करती थी। बड़े से झोले में, यानी कि उनके बड़े से थैले में सैकड़ों चिट्ठियां हुआ करती थी। जब वो आते थे तब हर कोई ये गाना तो बिल्कुल ही गाता था, डाकिया डाक लाया, और हाँ डाकिया आ गया है, ऐसा हर कोई ये कहकर उनको घेर लिया करते थे कि क्या उनका भी कोई संदेश आया है कि नहीं, ये भी पूछा करते थे।

उस समय दो रंग के पोस्ट आया करते थे, एक तो नीला रंग और पीले रंग का। इस पोस्ट को एक बार पढ़कर मन बिल्कुल भी नहीं भरता था, क्योंकि हर शब्द दिल से जुड़ा हुआ लगता था। ऐसे शब्द को पढ़ते समय सामने वाले का चेहरा आंखों के सामने हुआ करता था और ऐसा लगता था कि वो इंसान आपके सामने है और आपसे बातें कर रहा है। कुछ ऐसा ही था वह चिट्ठियों को लेकर लिखने का दौर, जो आज कहीं गुमसा हो गया है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो चिट्ठी का जमाना कहीं खो गया है। ये गाना याद नहीं आता।

आज के जमाने में खत्म सा हो चला है। अब तो पत्र लिखने का डे भी मनाया जाता है, जैसे कि 1 सितंबर, यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे।

0: वैसे तो अब चिट्ठियों का चलन नहीं है, वो दौर अब चला गया है जब चिट्ठियां लिखी जाती थी और पत्र व्यवहार हुआ करते थे। लेकिन वो लोग अभी भी है जिनके पास इतने सारे एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करना चाहते हैं। मैंने भी ऐसे ही कुछ लोगों से बात की जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। उनमें से एक ने बताया कि पुराने समय में चिट्ठी दिल से जुड़ी होती थी। उन्होंने बताया कि उनका मायका बहुत दूर है, पिता से हमेशा उनको जुड़ाव रहा था, लेकिन इसीलिए शादी के बाद जब ज्यादा वो चिट्ठी का इंतजार करती थी तो माँ के बजाय वो उनको इंतजार था अपने पापा की चिट्ठियों का। और पिता की चिट्ठी हफ्ते में दो बार अवश्य आया करती थी। उन चिट्ठियों को आज भी उन्होंने संजोकर रखा हुआ है एक संदूक में। जब भी उनको याद आती है अपने पिता की उनकी बातों की तो वो चिट्ठियां निकाल कर पढ़ लेती है। तब उनको यही लगता है कि उनके पापा उनके साथ बात कर रहे हैं।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
2: तेरी शिकायत कर दूं

0: कोई बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: जब बातें हो रही थी तब लगा कि चलो चिट्ठियों को लेकर और आज के डिजिटल युग को लेकर कुछ बात की जाए तो क्या अंतर रहेगा, क्या डिफरेंस आएगा। तब मैंने एक प्रोफेसर से भी बात की, कॉलेज प्रोफेसर है, और उनका ये कहना था पहले मोबाइल और फ़ोन नहीं था, इसके कारण परिवार और दूर रहने वाले दोस्तों के बीच एक चिट्ठी ही सहारा हुआ करती थी। हर शब्द में ऐसा लगता था मानो वह व्यक्ति सामने उपस्थित होकर, यानी कि आपके सामने खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा है। वो फीलिंग आती थी, वो इमोशन आपको फील होते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया है, यानी कि मैसेज की जो रीत आ गई है, तब से ये इमोशन बयां करने वाली जो रीत है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अब तो अगर मैसेज आए तो इग्नोर किया जाता है, मैसेज आए तो अनसीन किया जाता है, या तो देख लिया जाता है, लेकिन उसके साथ इमोशन का कुछ लेना देना बहुत कम हो गया है।

मैंने एक ऐसे इंसान से भी बात की जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़ा था। उन्होंने बोला कि पढ़ाई के वक्त जब माँ पिता और बड़े भाई को वो चिट्ठियाँ लिखते थे तब काफ़ी बातें हुआ करती थी। जब वो फिल्म देखने जाते थे तो पूरी फिल्म की कहानी, फिल्म में कौन हीरो है कौन विलन है, फिल्म से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें वो चिट्ठी में लिखकर अपने माँ बाबा को पहुँचाते थे। अपने भाई से बड़े ही अच्छी तरीके से बातें किया करते थे। जो बातें वो बोलकर नहीं कह पाते थे वो चिट्ठियों के जरिए अपने भाई से कह दिया करते थे। अब तो वो सुनहरे दौर कहीं खो चुके हैं। इसके साथ ही दूसरी पुरानी बातें भी डिजिटल युग में गुम हो गई है ऐसा लगता है।

आपको क्या लगता है, क्या ये बातें कहीं गुम हो चुकी है? अगर ऐसा लगे तो आप भी लिख दीजिए एक पत्र, एक लेटर अपने उस प्रिय और अपने चाहने वाले उस शख्स के लिए जिसको आपको कुछ कहना है जो आप कह नहीं सकते, तो लिख दीजिए। भले ही उस पत्र को आप भेज

पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातोने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो पालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्यां पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडियो पालनपुर पर तमारी वात ने पहोंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 9562688 9512996688। ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 9592968 9512996688 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सामर्दा रहो। 90.4 FM रेडियो पालनपुर।

गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस बड़े जबरदस्त एपिसोड में 80 की दहाई में, यानी कि 80 के दशक में जो है वो गाने जो जीते और वो गाने जो जीतते जीतते रह गए, जैसे कहते हैं ना विनर और रनर अप, तो जो पहला गाना है जो विजयी हुआ, अवार्ड मिला जिसे, वो गाना खयाम साहब ने बनाया, गुलजार साहब ने लिखा, किशोर दा ने गाया। और दूसरा जो बिल्कुल पीछे रह गया जरा सा, वो किशोर दा ने ही गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसका संगीत दिया और बख्शी साहब ने उसके बोल लिखे, आनंद बख्शी साहब ने। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप गाने सुनेंगे तो यकीनन बड़ा मजा आएगा। और ये तमाम गाने जो हैं कारवां क्लासिक के ये

सारे गामा कारवां के 5,000 गानों का जो नया तोहफा है उनमें से चुन के मैं लाया हूँ। अच्छा, खयाम साहब का जरा जिक्र करूँगा क्योंकि भाई विजेता उनका गाना हुआ था। वो दरअसल संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे। हाँ, वो तो केएल साइकिल बनना चाहते थे। 10-11 साल की इनकी उम्र थी और ठान लिया था कि भाई मुझे केएल साइकिल बनना है, क्योंकि सैगल साहब की फिल्मों से ये खासे मुतासर थे और इस चक्कर में घर से भाग भी गए थे। अपने चाचा जान के यहाँ पहुँचे थे ये सोच के कि भाई मुझे एक्टर बनना है, केएल साइकिल बनना है। लेकिन इनकी संगीत की शिक्षा वगैरह हुई और उसके बाद भी इनके मन में यही ख्याल था कि भाई आगे जाकर ये अभिनेता ही बनेंगे। लेकिन संगीत ने फिर इन्हें इस तरह से पकड़ा कि वो अभिनय का जो भूत है वो उतर गया और संगीत का जादू जो है वो चल गया। ऐसे और भी कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं आज इस एपिसोड में आपके साथ बांटे जाएंगे।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कुछ बड़े निराले गाने 80 की दहाई के। जी हाँ, एक है अवार्ड विनर और दूसरा जो है वो रनर अप हो गया, मतलब बस जीतते जीतते रह गया। उन गानों की जोड़ियां हैं आज के इस एपिसोड में। तो जिस गाने का मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, जो विजेता बना, वो दरअसल अमित कुमार साहब ने गाया, पंचम दा ने संगीत दिया, आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे। अब हैरानी इस बात की होती है कि अमित कुमार साहब को तो बहुत पहले 70 की दहाई में मौका मिल गया था, हाँ, और फिल्म बॉबी के गाने जो हैं ऐसा माना जा रहा था कि वो अमित कुमार साहब गाएंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देने वाले थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, अमित साहब जो रहे वो ज़रा घबरा से गए, वो मुंबई में ही नहीं थे, वो कलकत्ता चले गए कि नहीं नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा। और फिर मौका मिला था शैलेंद्र सिंह साहब को, हाँ, तो फिर वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में कुमार गौरव और विजेता पंडित स्टारर लव स्टोरी में अमित कुमार साहब की आवाज़ ने कमाल कर दिया था। हाँ, गाना भी आप समझ गए जो है, मैं चाहता हूँ इसे आप सुने। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का नया तोहफा है उसमें से चुन के लाया हूँ। हाँ, तो बड़े

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े जबरदस्त गाने सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का जो नायाब तोहफा है उनमें से मैं चुन के लाया हूं। और आज की जो ये फहरिस्त है उसमें एक गाना जो है वो विजेता और दूसरा बस जीतते जीतते रह गया, और वक्त जो है वो 80 की दहाई का है। हाँ, 80 का दशक जो है उसकी उस दशक की फिल्में, उस दशक के गाने। अभी जो गाना, जो विजेता गाना है वो तो आप सुनेंगे, परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ, मजरू साहब का लिखा हुआ, आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया, यकीनन बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप सुनेंगे। लेकिन जो गाना रह गया उस गाने की बड़ी दिलचस्प एक कहानी।

कहानी है कि लिखा तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने और मतलब एक बहुत पहले लिख दिया था और कल्याण जी आनंद जी ने फिर इस गाने का उपयोग किया फिल्म लावारिस। अब जब साहब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ हाँ तो बच्चन साहब ने अच्छी एक्टिंग तो करी थी, सारा काम बड़ा अच्छा ही था, लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान बच्चन साहब की शरीक हयात जया जी बड़ी नाराज हो गई थी। हाँ, इसके दो वर्जन हैं, जो गाना जीतते जीतते रह गया वो अलका याग्निक जी द्वारा गाया गाना रहा और एक वर्जन अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में। तो जया जी इतनी खफा हो गई कि ये क्या, ये इस तरह के लिबास में और औरत के भेष में जो हैं अमिताभ बच्चन, इतने बड़े सुपरस्टार स्क्रीन पे ये काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया कि वो चली गई थी उठ के, इतना नाराज़ हो गई थी। लेकिन आगे जाकर स्टेज शो जब अमिताभ बच्चन साहब और जया जी किया करते थे तब इस गाने पर वो थिरकती भी थी बच्चन साहब के साथ। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त ये किस्से हैं साहब। और वो गाना कौन सा वो भी आप समझिए। तो चलिए साहब, एक तो जीता हुआ गाना और एक जीते जीते रह गया गाना जो है वो ज़रा सुन लेते हैं।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में जो फहरिस्त है ये उन गानों की है जिसमें से एक विजेता और दूसरा जीतते जीतते रह गया। वक्त है 80s का, 80 की दहाई। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो गाना आप सुनेंगे वो विजेता गाना है, लेकिन बहुत पहले भी रियलिटी शोज तो नहीं कह सकते, पर हाँ टैलेंट हंट हुआ करते थे। आजकल तो बहुत रियलिटी शोज का मामला रहता है और एक से बढ़कर एक आवाज सामने आती है, बड़े मौके मिलते हैं। पर गुजरे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री अक्सर तलाशा करती थी कि एक नई आवाज मिले, है ना, और नए कलाकार भी मिले, इस तरह का हिसाब किताब होता था। तो मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट एक हुआ करता था। उस रेडियो कॉन्टेस्ट में दो आवाजें चुनी गई थी, एक पुरुष यानी कि महेंद्र कपूर साहब, उनकी आवाज चुनी गई, और एक महिला यानी कि आरती मुखर्जी। हाँ, तो आवाजें चुन तो ली गई, लेकिन बहुत वक्त लगा आरती मुखर्जी को एक अवार्ड जीतने में। और एक बड़ा जबरदस्त गाना इन्होंने गाया, पंचम दा ने इसका संगीत दिया था, गुलजार साहब ने लिखा। हाँ, और ये गाना वाकई बेजोड़ है। और आरती मुखर्जी को जब ये अवार्ड मिला तो सबने ही बहुत तारीफ की, अरे वाह, एक तो बड़ी मुख्तलिफ आवाज और गाना भी बड़ा जबरदस्त गाया। और जो गाना रह गया जीतते जीतते वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया था। हाँ, तो ये दोनों ही गाने आप सुनिए, एक विजेता, एक जो जीतते जीतते रह गया, और कुछ बड़े जबरदस्त किस्से जो हैं वो आपका साथ यकीनन निभाते रहेंगे।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कुछ बड़े जबरदस्त गाने 80 के दशक के, 80 की दहाई के, एक विजेता और एक जो जीतते जीतते रह गया। और ये जो दो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दोनों एक ही फिल्म के हैं, एक ही गायक ने गाए हैं, किशोर कुमार। हाँ, संगीतकार तो यकीनन एक ही होंगे, पपीदा, लेकिन गीतकार अलग अलग। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक प्रकाश मेहरा, वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ गाना जीता और उन्हीं की फिल्म में अनजान साहब ने जब गाना लिखा, वो गाना जीते जीते रह गया, दोनों ही नॉमिनेट हुए थे। फिल्म शराबी। अच्छा, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में ये बात बड़ी दिलचस्प है, बतानी भी चाहिए। ये बनना चाहते थे कि भाई किसी तरह से मैं कहानीकार बन जाऊँ, फिल्मों में आऊँ, नाटक वगैरह करूँ, ये पूरा मामला था, लेकिन घर से मुखालफत होगी ये डर था इन्हें। तो बिजनौर के ये रहने वाले, तो बिजनौर में इनकी जो, जिसे कहते हैं ना जनेऊ सेरेमनी जिसे कहा जाता है, जब वो हुई तो रिश्तेदार जो हैं वो कई पैसे, बहुत से पैसे देते हैं, नेक देते हैं ना, लिफाफे आते हैं, तो आजकल भी मिलते हैं। तो प्रकाश मेहरा साहब को वो लिफाफे मिले और उन्होंने वो पैसे वैसे ज़रा इकट्ठे करे और एक चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी में लिखा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, उस वक्त बम्बई कहा जाता था, मुंबई है, मैं बम्बई जा रहा हूँ कभी ना वापस लौट के आने के लिए, और अपने वायदे पे ये कायम रहे। हाँ, तो फिल्में भी खूब बनाई, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, और एंग्री यंग मैन इनकी फिल्म से ही उठकर आया था, जंजीर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाते नजर आए थे, और प्रकाश मेहरा साहब को जो है उनका लिखा जो गाना है उसे अवार्ड भी मिला। गाना कौन सा है आप सुन लो, दूसरा गाना जो है वो ज़रा तड़कता भड़कता है, पहला गाना ज़रा संजीदा है। हाँ, सुनिए इस गाने को, और ऐसे और भी कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्से, कुछ बड़े अनोखे गाने आप तक पहुँचते रहेंगे।